सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जे

हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन

0: दुनिया का मजा ले लो। पुराने जमाने में किसी ने कहा था, खैर रूपल क्या कहती हैं, कहती पता क्या, आज सभी को मुबारक हो, आज का दिन मेरे लिए तो स्पेशल है, क्यों, इट्स आर 35th कोरल वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा कोरल भी होता है, ओके 35 साल, आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू आवरसेल्व्स, मेरे शौहर और मुझे, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, रोटी कपड़ा और मकान रखा है सामने। दो तीन गानों के बाद रूपल, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो वेडिंग एनिवर्सरी, क्या ब्यूटीफुल केक्स बनाए हैं आपने। अच्छा किसी दिन करना है टेस्ट भी इनके केक को, लेकिन इनसे बाद, इनके बाद कौन आई हैं, सलमा अहमद।
1: जिंदगी जो सिखाती है वो किताबों में कहाँ मिलता है, सोना भी चमकने से पहले अंगारों में जलता है, मुश्किलें जितनी भी आए हौसला टूटना ना चाहिए, मेहनत करने वालों का मुकद्दर एक दिन जरूर बदलता है। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम सलमा अहमद के सुम।
0: या मेहनत से मुकद्दर बदल जाता है, दुआओं से भी कहते हैं कि मुकद्दर बदलता है, और यू कैन फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स बट डिटर्मिनेशन इज होली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। चिराग पटेल कहते हैं कि पता क्या, हाउ वॉज योर वीकेंड, होप इट वेंट वेल। बहुत अच्छे चिराग पटेल, कई बार ऐसा भी जी चाहते कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन घर में ही बैठे रहें, पुराने कपड़े पहनकर। आपका वीकेंड, आपने कहा इट वॉज इवेंटफुल, आई टुक द फैमिली टू अ कॉफी फैक्ट्री इन मुखरवेनी वेयर दे एक्सपीरियंस्ड हाउ कॉफी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बीन्स टू द फाइनल प्रोडक्ट। इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव टूअर ऑफ द फैक्ट्री। द किड्स लर्न समथिंग न्यू इन द आफ्टरनून, वी हैड लेट लंच इन अ होटल देन बैक होम। बहुत अच्छा किया आपने, वाकई आपके बच्चों का मुझे पता नहीं कि आप उनको किस कदर नॉलेज दे रहे हैं, कितना तैयार करें, मुझे लगता है स्कूल से ज़्यादा आप उनको नॉलेज दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। भरत गंगाराम इन लंदन, आपका नमस्कार, बहुत शुक्रिया। शार्क्स ओनली किल 10 ह्यूमंस पर शमीम कहती हैं कि ये जो शार्क्स हैं ना ज़्यादा नहीं मारते, ये ना सिर्फ 10 लोगों को खाती है शार्क्स, ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड किल 100 मिलियन शार्क्स पर ही है। कहते इंसान उसको मारता जा रहा है शार्क्स को, शार्क्स सिर्फ 10 खाती है, और ये जो इंसान है वो देखें 100 मिलियन खा जाता है, मार देता है। ओके शार्क्स आर कॉल्ड व्हाट, डेंजरस, फिर भी कहते हैं कि आप कहते हो कि शार्क्स डेंजरस है, वाह। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, आपने कहा है कि 80 साल के कौन हो गए हैं, आपसे पहले कृष्ण सर्वे ने कहा था, बहुत शुक्रिया। रंजन विनोद ने स्वागत कर दिया सभी बेमिसाल अंदाज के सुनने वालों को, और थैंक यू
2: प्रवीण जी। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये गाना फिल्म बहार का है, 1951 की मूवी है, जिसको शमशाद बेगम ने गाया है, जिसको मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, और जिसकी धुन एसटी बर्मन ने बनाई है। ये गाना विजयंती माला पे फिल्माया गया है, मेरे ख्याल से विजयंती माला का पहला पिक्चर था, और उसके साथ करण दीवान काम कर रहे हैं। ये पुराना गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ग्रेट। और यासर क्या कहते हैं, कहते हैं कि पता क्या, अस्सलाम वालेकुम, यस्टरडे इनका बर्थडे था और आज शी जिनपिंग का, वो 73 साल के हो गए, 73, कैसे स्ट्रेट चलते हैं, और समन क्या वकार, क्या दबदबा इनका, क्वाइट खामोश रहकर, वो बेवकूफ़ों जैसी फड़े नहीं मारते शी जिनपिंग, और आज दुनिया इनके कदम चूम रही है। Is also, क्या ही से, is also Suraiya, the Bollywood actress. अच्छा उसकी भी birthday है, और मैं आपको बताऊँ किसकी है, तारो कंडोला। तारो कंडोला हमारी बहुत पुरानी listener है, हम नकुरु में रहती हैं, और आपकी आज birthday है तारो कंडोला, बहुत बहुत many many happy returns of the day, खुदा आपको लंबी उम्र दे सेहत के साथ और अमीर अली राणा परवीन जी गुड मॉर्निंग टू यू पापा की मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता हर दर्द में साथ दे उनके पैसा कोई और नहीं हो उनके जैसा कोई और होता नहीं नहीं होता साया बनकर जब तक जिंदगी है साथ निभाते हैं पापा जैसा इस दुनिया में कोई शख्स नहीं होता आज पापा याद आ रहे हैं अमीर अली राणा कैसे भूल सकते हैं अपने माँ बाप को खैर यहाँ पर नहीं सलमा ये नहीं था आंसर आंसर कुछ और है और वो भरत गंगाराम आपने दे दिया है आंसर वेल डन कल समीन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 80वीं 80th बर्थडे मनाई है और एक और झूठा ऐलान कर दिया है कि जंग बंदी का ऐलान कर दिया है कौन मानता है समीन इनके बयानों को

समिन 80 साल के सदर ट्रंप हो गए, ठीक है, अब क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, मतलब गुफ्तगू क्या हो रही है मुल्क में? नहीं, उनकी सलाहियतों की नहीं हो रही कि वो कितने कैपेबल हैं, कितने होशियार हैं, नहीं नहीं नहीं सामिन, सारी दुनिया एक ही सवाल कर रही है कि क्या 65-67 साल रिटायरमेंट की उम्र के 15 साल बाद भी लोगों को काम करना चाहिए कि नहीं? लेकिन समझ, कुछ लोग पसंद करते हैं काम करते रहना, इनको क्या ड्राइव करती है चीज जो काम करते रहते हैं 70 के बाद, 75 के बाद, कौन सी चीज है जो इनको ड्राइव करती है? जो वक्त पे रिटायर होते हैं वो कहते हैं पता है क्या, ये 60-65 के बाद ना मुझे वो एक्सिलरेशन नहीं मिल रही थी, अच्छा, जो काम से मिलती थी पहले, ओके। लेकिन समय जो बड़े बड़े पद पर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा। इस साल अमरीकी कांग्रेस के 24 सदस्य 24 80 ईयर और अबव थे, 80 साल से ज्यादा उम्र के थे। 30% रिटायरीज आम तौर पर, मैं आम की बात कर रही हूँ, 30% काम की तलाश करते हैं, जी हाँ, वजूहात कुछ भी हों, लेकिन ज़्यादातर सोशल इंटरैक्शन के लिए कि हम लोगों को मिले जुले, हम बातें करें। समय आप, सवाल ये नहीं रहा क्वालिफिकेशन का, मतलब कि उम्र का नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन का सवाल है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, कितनी तालीम है आपकी। 93 साल वकील, 93 मैट्रिमोनियल लॉयर हैं समीन, वो क्या कहते हैं, ये भी अमेरिका में है, ये कहते हैं कि सबसे खुशगवार जो मेरे बरस हैं मेरे करियर के, वो 60 के बाद हैं, 70 हैं, 80 हैं, वाह। और समीन वहाँ वीडियोस वायरल हो रही हैं 80 साल ट्रंप की, सो रहे हैं मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में, वो सो रहे हैं। वहाँ हैरियट कोहन भी हैं, वो भी 80 से ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने अभी अभी नई कंपनी शुरू की है, कहती है मुझे सेंस ऑफ पर्पस मिल रहा है मेरे जीवन में। सर 95 साल के एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की है, कहते हैं आई एम 95 एंड आई स्टिल सी माई पेशेंट्स, आई स्टिल गो टू द क्लिनिक। कहते हैं मैं अपने मरीजों को देखने खुद जाता हूँ और वो बार बार मेरे पास आते हैं, कुछ 50 बरसों से मेरे पास ही आते हैं। कहते हैं वो लोग तो मुझे नहीं पूछते कि तेरी उम्र क्या है, कहते हैं उनको भरोसा है मुझ पर, मेरी काबिलियत पर, वो आते जाते हैं। क्या बात है, कमाल है। तो समझ ये है कि 80 साल कुछ भी, आते जमाने में भी मैं तो ये तो 90 साल के भी काम करेंगे। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू यू एंड द लिसनर्स, किसने कहा है, शोभना और दिनेश, दिस प्रोग्राम इज लाइक ऑक्सीजन वी इनहेल, इट हैज सिंटिलेटिंग म्यूजिक एंड सो मच मोर, वी बाउ टू यू फॉर योर अनएंडिंग एफर्ट। ओह माय गॉड, शोभना एंड दिनेश, आई एम सो हैप्पी कि आप भी ऐसे फील करें। समय कल नहीं, सैटरडे के दिन मैंने कहीं एक रिलीजियस फंक्शन अटेंड किया, वहाँ एक मेरी फैन थी, मतलब अच्छी, बहुत दोस्त भी हैं, फैन भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें पता है कि बेशक मैं आपको नहीं मैसेज करती, एक एक वर्ड आपका सुनती हूँ आपके। मैंने कहा क्वेश्चन, कभी आपने आंसर नहीं किया। कहती है एक एक क्वेश्चन सुनती हूँ और फिर इंतज़ार करती हूँ कि आप जवाब दें, जैसे कि आज उन्होंने ट्रंप के लिए इंतजार किया होगा। टीना क्या कहती है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम सरस्वती चंद्र, ओके। और अब जो एमएल विश्वकर्मा ने कहा है वो करती हूँ, लेकिन पहले रूपल और इनके शौहर की नॉट वेडिंग एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है शादी की, उनके लिए ये गाना, हैप्पी एनिवर्सरी।

जाएं सारे गम, क्या बात है। हितेन कहते हैं कि पता है क्या, ये जो बॉल है ना फीफा का वर्ल्ड कप, ये बना है सियालकोट शहर पाकिस्तान में, अ सिटी दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फुटबॉल्स। कहते हैं फ्रॉम हैंड क्राफ्टेड एक्सपर्टीज, समझिए हाथ से बनाते हैं, एक्सपर्टीज टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान्स फुटबॉल इंडस्ट्री हैज बीन एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल गेम फॉर द लास्ट 4 decades। कहते हैं 40 बरसों से पाकिस्तान की ये सनक जिसमें फुटबॉल तैयार होते हैं वो फुटबॉल तैयार करती आ रही है 40 बरस। द बॉल, समझ, इस साल मैंने आपको कहा था ना बॉल में नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है। It has been connected, the ball has been, has connected ball technology and a precise 100 Hz motion sensor. जी, ये motion sensor की मैं बात कर रही थी, ये chip लगा है ball गेंद के अंदर। This allows real-time tracking of the ball's movement. समझ, जहाँ जहाँ ball जाता है वो screen पर आ जाता है, कौन सा खिलाड़ी लेकर जा रहा है, किसने मारा है ball, कहाँ जाके रुका है, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। दिस अलाउज रियल टाइम ट्रैकिंग एंड सेंड्स एक्यूरेट डेटा टू द वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम। हितेन, दिस इज वंडरफुल, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। समी, वो जो होता है ना असिस्टेंट, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, उसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, वो देख सकता है कि किसका कसूर है, कहाँ गया है, क्या किसने किया है, और फिर वो अपना फैसला सुनाता है। द टेक्नोलॉजी हेल्प्स ऑफिशियल्स मेक फास्टर मोर एक्यूरेट डिसीजंस एस्पेशली ऑन क्लोज ऑफ साइड कॉल्स। जब ऑफ साइड जाता है तब समन कहते हैं नहीं इसने मारा था, उसने मारा था, वहाँ तकरार शुरू हो जाती है। तो समन, अब ये टेक्नोलॉजी उनको मदद करेगी फैसला करने में। वाह, क्या बात है। हितेन, थैंक यू, यू आर इन लंदन। मिस्टर मेहता एम्बू से गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, और कहते हैं कि यू आर अवेयर दैट सुमन कल्याणपुर बॉलीवुड, या हमने बात भी की थी, उनके गाने भी सुनाए थे। She died on 31st of May. Gigi, I just knew through Indian Idol. Very sad. You're right, Mr. Mehta from Embu. Bahut afsosnak tha. Ye bhi baat ke jitni wo shohrat ki haqdar thi wo mili nahi. Okay, Parveen Sahiba, I am from Delhi. Shahab Zaman, welcome from Delhi to Bemisal Andaz. Bahut khushi hui, achhi baat hai ki aapne message bheja hai. Okay, there are 3 solutions to every problem. Accept, change or leave it. If you can't accept it, change it. And if you can't change it, leave it. Sally Dar in London. Thank you. Aur kisne answer sahi diya? Dimple Shah. Ki kaun hai jo apni girlfriend ke saath frolic kar raha hai aur unka jo unki jo national qaumi team hai wo football ke maidan mein utri hui hai? Ye sabiq prime minister Dimple Shah. Bahut khoob, thank you for the correct answer. Yes sir, former prime minister, he skipped the World Cup match in Toronto to watch the USA versus Paraguay game. Haan, achha, wo USA aur Paraguay ki game pe chale gaye kyunki unki girlfriend, ye girlfriend boyfriend samin umar ke saath acha bhi lagta hai. Ab aap teenagers ke baap hain, 17 साल का आपका बच्चा है, आप कह रहे हैं मैं बॉयफ्रेंड की ड्यूटी निभा रहा हूँ। कई बार इंसान सोचता है ये कैसे कैसे लोग समिन बन जाते हैं लीडर। चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। और जी, जस्टिन ट्रूडो सना, करेक्ट, मेरे मुंह से निकल गया, समिन आंसर है जस्टिन ट्रूडो। और रसीला, आपने भी वही नाम बिल्कुल करेक्ट दिया है, और वो इन्फॉर्मेशन जो अभी यासर दे

कर गए हैं वही आपने भी दिया जबीन हिरानी बिल्कुल सही जवाब है आपका और हितेन ने ये भी आंसर बॉयफ्रेंड का नाम दे दिया बॉयफ्रेंड मुझे तो हैरानी cited boyfriend duties as the reason for missing मैं क्या करूं मैं तो बॉयफ्रेंड की ड्यूटी निभा रहा हूं आपके बेटा निभा रहा होगा वहां किसी और से था आप भी निभा रहे हैं खैर रितु गुप्ता करेक्ट आंसर लखबीर करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब थैंक यू सो मच इंडीड

0: और ये भी मशहूर गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का। अब देखते हैं पर्दे पर कौन कौन आए हैं। और जयश्री आपने कहा है, ऑल्सो पाकिस्तान एंड सो मैनी कंट्रीज, ऑफ कोर्स नॉट। हमने पूछा है कि वर्ल्ड कप के फुटबॉल कौन बनाता है, नॉट सो मैनी कंट्रीज, ओ नो। मंजुला विश्वकर्मा,
1: ये कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, जो अपनी गर्लफ्रेंड कैटी पेरी का परफॉर्मेंस देखने के लिए अपना फुटबॉल मैच छोड़ दिया फर्स्ट, और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए गए।
0: समय कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं, इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, वो तो बड़े सुलझे हुए थे, ऐसी बातें कभी ना वो करते। खैर, आप हैं रीना। रीना, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर कि वो केटी पेरी का की परफॉर्मेंस देखने चले गए। शोभना एंड दिनेश, आपने भी सही जवाब दिया है। रसिला, आपने कहा है श्योली पंजी, ट्रू हाउ दे बिहेव इन सच सिली मैनर एंड बिकम इट बिकम्स न्यूज। मुझे लगा रसीला आप कहेंगी कि दे बिकम टीनेजर्स, जब इंसान की उम्र होने लगती है फिर अपनी जवानी याद आती है, तो इस तरह की हरकतें समय पर, ऐसी अहमकाना हरकतें जेब नहीं देती एक प्राइम मिनिस्टर को, अपने मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर थे।
2: हेलो प्रवीण जी, वेलकम मंडे, सारे नमस्कार, अज संगरांद दावी दिन है, सारे नु बहुत बहुत मुबारक, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सानू भी जेडे पुराने गाने आ, असी भी सारे जने आपा जिंदगी भर नहीं भूल सकते, इन्ने अच्छे गाने आ। थैंक यू।
0: बिल्कुल जतिंदर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हैं कौन, जी हाँ, कीर्ति, आपने क्या लिखा है? आपने कहा, आई हैव नॉट बीन एबल टू लिसन टू योर प्रोग्राम एज माय रेडियो इज नॉट वर्किंग। ओ माय गॉड, रेडियो को रिपेयर करवा लो प्लीज, आई मिस हियरिंग योर वॉइस एज वेल एज द ब्यूटीफुल सॉन्ग, इज देयर अ वे आई कैन लिसन? देखो, आपको, आप जाएं, हमारी वेबसाइट है eastfm.com, ठीक है ना, www.eastfm.com, वहाँ पर एक रेडियो लिंक है, आप उस पर सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन को करें इस्तेमाल, अपने कंप्यूटर को करें इस्तेमाल। कीर्ति, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वाह वाह, शहजादी साहबा, रफ़ी साहब, बरसात की रात का गाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉपुलर हुआ। सर जस्टिन ट्रूडो का तो आंसर आपको मिल गया है, आगे देखते हैं आपने क्या करना।
3: भांगड़ा बॉलीवुड हिट्स एंड बैलेड्स टू सिंग अलोंग विद
4: ईस्ट एफएम,
3: केन्या'स प्रीमियर
4: एशियन मिक्स। इट्स 11:19।
5: दिस वीक लेट्स ट्रांसफॉर्म योर लिविंग रूम टू अ मास्टरपीस, योर बेडरूम टू अ हेवन ऑफ रेस्ट, योर बाथरूम टू अ मैजिकल क्लेंजिंग ओएसिस, योर किचन टू अ फाइव स्टार कुकिंग स्पेस, योर आउटडोर टू अ पैराडाइज। And you will do it at up to 85% off. Join the Big Breakfast with Rehmat and Jameel and learn about the big annual sale at Tile and Carpet and Tuck. You'll be amazed at the items that they have on sale. Plus, get a chance to win a shopping voucher worth 3,000 shillings from Tile and Carpet. That's on East FM with the big annual sale at Tile and Carpet and Tuck.
6: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
7: Podplay Agency is looking for a capable and experienced SEO marketer. Degree or diploma in a relevant field and 3 to 4 years of experience in SEO marketing is required. Experience in the betting industry is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply. Podplay Agency is looking for a capable and experienced digital marketer. Degree or diploma in a relevant field and 3 to 4 years of experience in digital marketing is required. Experience in the betting industry country is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
6: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
3: Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.
8: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: तलत महमूद, क्या बात है। अब देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। यासर, प्लीज दिले नादा तुझे हुआ क्या है, इज एन आइकॉनिक गजल penned by the legendary Mirza Ghalib. Dile Nada Tujhe, he was famously immortalized as a duet by singer Suraiya and Talat. 1954 classic Mirza Ghalib starring Suraiya and Bharat Bhushan. Wah, kya jodi hui hogi. Suraiya Jamal Sheikh, 15th June 1929 she was born, was an Indian actress and playback singer. Suraiya acted in over 70 films and sang 338 songs. Suraiya was the most celebrated actress and was paid more than her female counterparts in her heyday. Suraiya was known as Malka-e-Husn, Queen of Beauty and Malka-e-Adakari. Really? Suraiya, kya baat hai yaar? Acha, Dil-e-Nada main dhoondti hoon, agar mil jata hai to. दर्शन सिंह लोटे, आपने कहा सबको मंडे मुबारक। चलिए ठीक है, अब क्रिकेट की तो खबर चाहिए ना आपको।
1: रवीना जी, अलैकुम सलाम। इंडिया और अफगानिस्तान पहला ओडीआई मुकाबला इंडिया ने 7 विकेटों से जीत लिया है और वुमन आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा ओडीआई मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज तीसरा T20 मुकाबला वेस्ट इंडीज ने जीत लिया है और इंडिया है और श्रीलंका है, इंडिया है ने 265 रन बनाया है 50 ओवर में।
0: सर, मुझे पता है कि आप दिनेश भट्ट की कंट्रीब्यूशन को कितना करते हैं, कदर से देखते हैं, क्योंकि जब इनका जन्मदिन था दिनेश भट्ट का, तो आपने भरपूर दुआएं की और ग्रीटिंग्स भेजी थी। और प्यार अली भाटिया,
2: प्रवीण जी, मेरी याद में तू ना आंसू बहाना, ये गाना मधोस का है, 1951 की मूवी है जिसको तलत महमूद ने गाया है और ज़्यादा राजा मेदेली खान ने लिखा है और जिसकी धुन मदन मोहन ने बनाई है। ये मूवी में मनोज देसाई और उसके साथ मीना कुमारी ने काम किया है। ये पुराना गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: और इनके साथ ही अब चलते हैं समय, ये जो पहले सुनिए ब्यूटीफुल गुमराह का।

हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू. हैप्पी न्यू वीक, हैप्पी मंडे. कैसे जा रहा है आपका दिन? आई होप यू हैड अ फैंटास्टिक स्टार्ट टू द वीक. कमिंग अप दिस आवर इज गोइंग टू बी योर मिक्स अप चैलेंज. साथ ही साथ में वर्ल्ड कप चल रहा है, द वर्ल्ड कप फीवर इज ऑन, एंड उसके बारे में बात करेंगे. एंड अबाउट टू लेजेंड्स, एक्चुअली अ कपल ऑफ लेजेंड्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस, हु इट माइट बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप. And I've got great tunes lined up in the vocals of various artists. So all that you have to do is keep it locked only on the City Lights with Vishal.